वावाई न बे चाइ मताओ ना उन सचान्या छाना योग मासु यो यो बने को नयो जाम ना चावाई सो वाव ना उन हस्पास वचुंदे एउ मे पेहन्या खुदियो जासु उन सचान वचुंदे कुआ वमेन चांग यु ना ओ हजियो जापा गदे जक विते आच हान दाउ बक क्वेश पना वाला एस सुचिना स्कैन बंक नयो जाबा जामई चान्या खा पुइवाव ना ओ हजमेक मायु जमाई पुईवा वन ना भाई सो यो चा पुईवा ना वो हजमे आजियो कुछ पर जमाई ना एंटे पका ही ना वो है नंबर सुबह जावे ताजियो हाँ तो जमाई से ना उसको ने कुना न्यू चा सुबह जमाई ना एंटे का ही ना वो है न्यू आजियो जमाई वाला पुई भी ना वो है तो जब मायु जो चा जेत को सुबह जमाई एव का ही ना वो है तावो वो चुन्दे या आई सुबह नांजिक थे मेलु गए बस कतेगा यहाँ कुदियो चा जामता अंदर तो उसने सियाक पा वाला वो रहूं उस ताजे जा सुबह जमाई क्या ही मतलब वो आज यो चा सुबह जमाई वाला कहियो ना वो है ना बात को सवाल देना यो क्या ही मतलब वो एक वो शक पा जमाई कहियो ना वो है ना एंड देना यो जो जाऊँ स्पष्ट वही है, कुछ उन दे एड्स को कुछ ही है, बाज़ार में वाला जाम तो उसे वो ऐसे जा सुबा, जो उस ना उनके चांजिक थे वा कहने ना वो यहाँ चो, मासुबा चेक चेक पुई या कहने हिंगे ऐसे बाज़ार में वाला वाव ना वो है ना यो, जानियो माप योनस कहने वो है ना जो, जा स्पष्ट वही वाला पुईताश ना वो है ना यो, ये तो सुबा उपने को मायो चेक एड्स को ही पियां पने को जा सुबा जमाई वाला सुन जाना यो, ये कुछ बाज़ार सुबा हाँ दरम जमाई एव थिंक्षा चासो बापुई वाव ना मैं वहन से जेत को ऐसो बाव मसे ना उपा ने को नयो मायो थेंक को वेश पा कसे उपा ने चको सुचे नयो चास पस यम वही पुई ताश ने लोच को पा पी ना वही है वन चा लोच को वेश पा से एव थिंक ताश कहा ने को ना चा वही सुजुआ है आजियो आई सो बजा वही कोला कहियो नयो आचो एच को यू कसे में या माओ चासो बा सुजिया ना वो हुआ ना बे चाहे मताओ चासो बजा वही हां दरा कसेन्या खुदियो ना वाला या तो पुईताश ना वो है नयो कसेन्या खुदियो जमाई गुचे सा वाला स्कैम जग ना उसो जना वो है आजियो चासो बा लोच को विश पा जमाई पी ना वो वो है वो इनसे आजियो चास पा जमाई वाला काही ना मासु यु जमाई लोच को छे थैं वश पा जमाई पैच कुहो ना न्यू चासो बा यो माहि मेगिन एउताश काहिया खुदियो मादा चा बा सुजुना आजियो आइसो बा जमाई ना एंते बा वाला काही ना वो है नंबर को तवल देना न्यू क्या से मई क्वेश बजा ना एंते बा काही ना वो है ना न्यू क्या सुबह हाँ तो जा वाला मुझसे ना उस पर नहीं करनी हो ना एंड बाज जाऊँ ये यू है चुन देना वो है जो आई सुबह जाऊँ ये हाँ तो जा पुईताश ना वो है ना बात को जावल ते नहीं हो ये कुछ जाऊँ मुझसे ना उस पर नहीं करनी हो आई सुबह वुटे सुस नहीं पायो है ना न्यू क्या सुबह जाऊँ ये वो शक पापुईवा उठाई हाँ ता मुझसे ना वो इनका नाम बात को जावल ता जो कुछ पाज जाऊँ ये ना एंड पुई पी